सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के अषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 20 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। आप सबों का दिन मंगलमय हो।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के

0: अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
2: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के 2-4 कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं। जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के 2-4 छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ 2 पंक्तियां। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण।

0: रहीम सोच में है। पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं, तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरि धरत निज शीश पर, कहु रहीम कही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था। सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की, तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है, और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: तो अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, विषय था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। तो आइए शुरुआत करते हैं, सुनते हैं हरिहरन और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में गाए इस गीत को, भजन को।

तो भी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में गाए इस भजन को, और आप सुन रहे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में गाए इस भजन को।

0: बजकर 40 मिनट हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी,
1: एपिसोड 19, 19।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वह इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

तो अभी आप सुने थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं और आइए बता रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम

का कार्यक्रम लोक रंग 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम काव्य धारा। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत का समय होगा सुबह 8:30, सुबह 7:30 का। सुबह 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। पुनः 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। संध्या 3 बजे आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, और 4:02 पर आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

संध्या 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे राज्य केंद्र से, और 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से, और 6:02 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से जानकार का समय होगा। संध्या 7:15 पर कार्यक्रम खेलेंगे शान से आप सुनेंगे संध्या 7:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे संध्या 7:45 पर। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9, और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ. भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ. उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां

0: पुनरुद्घाटित बनतौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,800-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। बेस है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। तो आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शारदा सिन्हा के आवाज में गाए प्रोग्राम का अगला नगमा।

0: तो अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुबह के 7:20 हो रहे हैं, समय हो चला है कार्यक्रम काव्य धारा की, और आज हम सुनेंगे अभिषेक अमन की कविताएं उन्हीं की जुबानी। तो आइए सुनते हैं काव्य धारा में।
1: मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा।

अब मेरी अगली कविता का शीर्षक है आजाद। मूछ पर भी ताव होगा, तलख तेवर जो हुआ।

0: अक्षर जो हुआ। शुक्रिया।
1: तो अभी आप सुन रहे थे अभिषेक अमन की कविताएं, उन्हीं की जुबानी, कार्यक्रम काव्य धारा में।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत, और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं अभिजीत की आवाज में गाए इस गीत को।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए इस गीत को, और कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शंकर महादेवन की आवाज में गाए इस गीत को।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रुणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4-9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15-27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8

0: विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमौली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे। श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़े रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले दो दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 से कम पंचायतों वाले प्रखंडों और अंचलों में एक ही पदाधिकारी बीडीओ या सीओ के रूप में कार्य करेंगे, जबकि 12 से अधिक पंचायतों वाले प्रखंडों में दोनों पद यथावत रहेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
1: हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दिया, सर प्रोविजन भी हम लोगों ने उसमें डालने का सहमति दिया। आप लोगों से तत्काल अब तैयारी चल रही है, समय आने वाले मैंने भी फॉर्म भरा। चुनाव आयोग पूरे देश के कई राज्यों में एफआईआर का काम आरंभ, और मैं भी आपको के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग इस तरह का बने और एफआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे करीब 50,000 कर्मियों और पदाधिकारियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 7 अक्टूबर तक एसआईआर कार्य में लगे किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मिल रही शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी मतदाता को फॉर्म भरने या एसआईआर से जुड़ी कोई समस्या है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 या बुक कॉल के जरिए संपर्क करें। मतदाता अपने बीएलओ से एसआईआर स्टिकर पर दिए गए नंबर, ईसीआई नेट ऐप पर बुक कॉल और कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स फीचर टोल फ्री नंबर 1950 या सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची के कांके में कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बीएलओ के साथ अभियान की समीक्षा की। मौके पर राजू ने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक कर विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
2: कांग्रेस पार्टी हरेक जिले में, हरेक ब्लॉक में, हरेक बूथ में वो एसआईआर प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ। लास्ट 6 महीने में ये प्रक्रिया के बारे में हम हरेक जिले में, हरेक ब्लॉक में बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक मामले में कहा है कि एडहॉक आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले अस्थाई कर्मचारी भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को केवल अस्थाई होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला सुनाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष

0: विशेष राहत अभियान चलाकर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, जबकि मृतका का पार्थिव शरीर भी सम्मानपूर्वक उसके गृह जिला पहुंचाया गया। सुरक्षित घर लौटने पर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। झारखंड सरकार आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर फोकस होगा। सचिव आईटी पूजा सिंघल और सचिव उद्योग अरवा राजकमल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। दो दिवसीय आयोजन के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जीआरआर रेगुलेशन और पीपीपी पॉलिसी समेत कई नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे और विभिन्न एमओयू पर हस्ताक्षर और डिजिटल पोर्टल्स की लॉन्चिंग होगी। गुमला सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर को नई अनुज्ञप्ति मिल गई है। जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इसे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब 6-7 महीने के प्रयास के बाद लाइसेंस मिलने से अब जिले में रक्त उपलब्धता की समस्या दूर होगी।
1: सदर हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर में पूर्व में वर्ष 2018 से चल रहे थे, वो 2022 में इसका लाइसेंस रिन्यूअल लेने के कारण समाप्त हो गई थी। ब्लड सेंटर तो चल रहा था लेकिन अनुमति नहीं थी, जो बंद होने के उपरांत हमारे जिला में ब्लड को लेकर काफी परेशानी होने लगी।
0: रांची में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने कल रात कई बार और पब में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन स्थानों पर नाबालिगों का प्रवेश न हो और किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधियां न होने पाए।
2: स्पेशली जो अंडर एज ड्रिंकिंग है, कोई भी बच्चा अगर 21 साल से कम का है तो उसे किसी भी शॉप में या फिर वहाँ पे, चाहे वो सिगरेट हो या फिर लिकर हो, सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति सेवन करता है तो और रोड पे निकलता है, बाइक को चलाता है, उस टाइम पे एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती है, तो एक लूप है उसमें। एक बच्चा कुछ भी गलत काम करता है तो उसमें फंसने की चांसेस रहते हैं, तो इसी प्रकार से हमारा दायित्व बनता है कि उनसे इन सब चीजों में ना पड़ने दिया जाए और उनकी मदद की जाए इस तरह से।
0: झारखंड में मॉनसून सक्रिय होने से बारिश की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में राज्य में औसतन 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे बारिश की कमी घटकर 61% से 46% रह गई है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत कई जिलों में बारिश तथा अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अखबारों की सुर्खियां, रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, रिम्स 2 2 चरणों में होगा विकसित, 2800 बेड का होगा अस्पताल। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड के विरोध में आज भाजपा ने बुलाया बंद। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले मामले में 2 आरोपी एनआईए की रिमांड पर। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति पर चल रहा है विचार। और अब अंत में मुख्य समाचार, झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे, श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण मीनाक्षी के साथ।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में गाए जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये नगमा। संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो अभी आपने सुना काश्मीर की कली फिल्म का ये नगमा। आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। संगीत तैयार किया था ओपी नैयर ने और गीत के बोल लिखे थे एसएच बिहारी ने। तो प्रोग्राम का आखिरी नगमा सुनते हैं। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं पे समाप्त होता है। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी का गाया हुआ पटियाला हाउस फिल्म का ये गाना। लिखा है अन्विता दत्त ने, शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं जब तक है जान फिल्म का गाना नीति मोहन की आवाज में, साथ में है रैप सोफिया अशरफ का, गुलजार के बोल ए आर रहमान का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है। सुबह भीनी हो जाए, शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में यह ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और के बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी

सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं, जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

चले। एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा। डे टू डे हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

जोहार। तो कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आपके रेडियो दोस्त वंदना अर्चना हाजिर है आपके पसंदीदा प्रोग्राम और गीतों के साथ। आज गीत संगीत होगा, कुछ चर्चाएं भी होंगी और हमारे शहर हजारीबाग में क्या घट रही है उन घटनाओं पर भी एक सरसरी नजर डालेंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, जिंदगी में लड़ने वालों के कदम में जहान होता है। संघर्ष में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हमेशा एक और मौका देता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, क्योंकि पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें मेहनत और से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता।

दोस्तों, वन हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ये हमारे जीवन का आधार है। ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, साथ ही वर्षा कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन में लाखों जीव जंतु का घर है और साथ ही हमें भोजन, ईंधन और जीवन रक्षक कई सारी दवाइयां और जड़ी बूटियां भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, वन से हमें कीमती लकड़ियां, गोंद, लाख और कई प्रकार के फल मिलते हैं। वन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल में पेड़ों की जड़ें जो होती हैं, वो मिट्टी को कसकर पकड़ के रखती हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। साथ ही वन ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम करता है और तापमान को भी नियंत्रित रखते हैं। दोस्तों, जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यानी ऑक्सीजन। वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, उसी तरह से हमारे देश में वन बचाओ या पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं। पेड़ों के बचाने के लिए लोग अपने प्राण तक का बलिदान दिया है। तो आज हम उन्हीं आंदोलन की कहानियों को जानेंगे, मगर आइए सुनते हैं अभी एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आज हम जानेंगे वन बचाओ आंदोलन की कहानियां और वन महोत्सव सप्ताह के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वन बचाओ आंदोलन कई हुए हैं, जिसमें है छिपको आंदोलन। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन में से एक है। 1974 में चमोली जिले के रैनी गांव में ठेकेदारों द्वारा जंगल काटने आए तो गांव के पुरुष वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बहादुर महिला गौरा देवी ने आगे आकर और सारी महिलाओं ने उनके साथ मिलकर सभी पेड़ों से चिपक कर अपनी बाहों से पेड़ों को जकड़ लिया और उनका यह कहना था कि यह जंगल हमारा मायके है, हम इसे काटने नहीं देंगे। और आखिरकार सरकार को पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। दूसरा है जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन झारखंड और उड़ीसा में हुई थी। दोस्तों, आदिवासी समुदाय और जंगलों का रिश्ता अटूट है और इसी को बचाने के लिए आंदोलन

यह आंदोलन शुरू किया गया था। 1980 के दशक में सिंहभू जिले के जंगल में सरकार द्वारा प्राकृतिक साल के पेड़ों को काटकर उनके स्थान पर टीक के पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया, पर आदिवासियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और आदिवासियों ने इस जंगल काटो आंदोलन करार दिया और अपने अधिकारों की रक्षा की। इसके बाद1930 में जोधपुर के राजा के सैनिक खेजड़ी गांव में महल के निर्माण के लिए हरे खेजड़ी के पेड़ काटने पहुंचे। गांव की अमृता देवी बिनसोई ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने कहा, सिर साटे रुख रहे तो भी सतोच जान, यानी यदि एक पेड़ को बचाने के लिए सिर भी कट जाए तो यह सौदा सस्ता है। तब जब सैनिक नहीं माने तो एक एक करके 83 गांव के 363 बिनसोई ने पेड़ों से लिपट कर अपने प्राण निछावर कर दिए और इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे माफी मांगा और शाही फरमान जारी की, आज के बाद बिनसोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।

और दोस्तों भारत में वन महोत्सव सप्ताह हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। दोस्तों यह महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। दोस्तों इसकी शुरुआत कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी द्वारा 1950 में की गई थी। क्योंकि जुलाई का महीना चुनने का कारण यह है कि इस समय भारत में मानसून की शुरुआत होती है, जो कि नए पौधों के पनपने के लिए सबसे अनुकूल समय होता है, क्योंकि इस समय पौधे का लगाना और जीवित रहने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। वन महोत्सव वृक्ष के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह हरित आवरण बढ़ाता है। भारत के जंगलों और हरियाली को बढ़ाने के लिए इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी शुरू किया गया है, ताकि लोग पेड़ों की बारे में उनकी समझ सके कि यह जंगल हमारे लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर जंगल की कटाई होती है तो जलवायु में भी परिवर्तन होता है और साथ ही साथ प्रदूषण का भी प्रभाव बढ़ता है। तो इसी वजह से यह सप्ताह मनाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक पेड़ लगा सके और लोग जागरूक हो सके कि यह जंगल हमारे लिए कितना ही जरूरी है। क्योंकि इस जंगल से कई लोगों की जीविका चलती है, जंगल से हमें लकड़ियाँ मिलती है, बहुत सारी चीज़ मिलती है जो कि हम निर्भर हैं जंगलों पर। तो इसीलिए जंगल को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से वन महोत्सव मनाया जाता है।

तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मौसम का हाल। आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:44 पर और कल सूर्योदय होगा सुबह 5:11 पर। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी।

और दोस्तों आज है 3 जुलाई और जानते हैं किन किन कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई है। ১৯৭২ में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए और 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई। कुवैत में 50 सदस्यीय संसदीय चुनाव का संपन्न हुआ 1999 ईस्वी में।

रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी साल 2004 में और महेश भूपति और मैरी पियर्स ने टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता साल 2005 में।

साल 2006 में कैरी बीआई द्वीप पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की और स्पेन ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जताई साल 2006 में। और विवादास्पद लेखक सलमान रुशदी ने अपनी पत्नी पद्म लक्ष्मी से तलाक लेने की घोषणा की साल 2007 में। और न्यूयॉर्क में दलितों का सम्मेलन शुरू हुआ साल 2008 में। और अचल कुमार ज्योति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए साल 2017 में।

और आइए जानते हैं किन किन हस्तियों का जन्म हुआ आज ही के दिन। में दिगेंद्र सिंह महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक हैं जिनका जन्म हुआ आज के दिन। और भारतीय निशानेबाज आरती सिंह राव जिनका भी जन्म हुआ 1989 में आज के दिन। मुगल बादशाह जहां के पुत्र शाह सुजा जिनका भी जन्म हुआ आज के दिन 1616 ईस्वी में। और प्रख्यात भारतीय कैनेडियन और उपन्यासकार थे रोहिणी टन मिस्त्री जिनका भी जन्म हुआ 1952 ईस्वी में आज के दिन। और मलयालम सिनेमा और भारत के चोटी के फिल्म निर्माताओं में से एक थे अटोर गोपाल कृष्णन जिनका भी जन्म हुआ 1941 ईस्वी में आज के दिन। और भारत के प्रसिद्ध समाज सेवी

स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे हंसा मेहता भी, जिनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में आज ही के दिन। और आइए जानते हैं कि इन किन हस्तियों का ने इस दुनिया को अलविदा कहा। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक थे मनोज कुमार पांडे, जिनका निधन हुआ 1999 ईस्वी में आज ही के दिन। और हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार, जिनका भी निधन हुआ 1996 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा बिहार के मुख्यमंत्री थे केदार पांडे, जिनका भी निधन हुआ 1982 ईस्वी में आज ही के दिन। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार संभरवाला, जिनका भी निधन हुआ साल 2015 में आज के दिन। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के भूतपूर्व राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, जिनका भी निधन हुआ साल 2019 में आज के दिन। और भारतीय प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान, जिन्होंने भी दुनिया को अलविदा कहा आज के दिन साल 2020 में।

तो दोस्तों आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समय का सदुपयोग और समय प्रबंधन क्या है। दोस्तों समय का सदुपयोग यानी यूज ऑफ टाइम का अर्थ है समय को व्यर्थ ना गंवाकर उस खाली समय का उपयोगी कार्यों में लगाना, यानी अपने समय की बर्बादी ना करना। आप सभी जानते हैं कि समय लौट कर कभी नहीं आता, इसलिए समय का सभी को कद्र करना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम अपने सभी कामों को हमें श्रेणीबद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, इसे अंतर को समझना बेहद जरूरी है। कई तरह के कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना यानी सुनियोजित रणनीति बनाना को समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। समय का सही उपयोग और प्रबंधन हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से हमें हमेशा सफलता हासिल होती है। दोस्तों एक निश्चित लक्ष्य के साथ साथ दैनिक या साप्ताहिक कार्यों की प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले करने चाहिए, साथ ही टाल मटोल से बचना चाहिए। जब हम सुनियोजित तरीके से काम करते हैं तो काम का दबाव और तनाव दोनों कम होता है, क्योंकि जो लोग समय की कद्र करते हैं वे जीवन में उन्नति करते हैं और समाज में भी आदर पाते हैं, क्योंकि योजनाबद्ध तरीके से काम करने से अंतिम समय में घबराहट जो होती है, उस घबराहट और मानसिक तनाव से हम बच सकते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर चले। साथ ही विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और जवानी में मेहनत करने से बुढ़ापा सुखी और सुरक्षित बनता है, तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि समय का सदुपयोग भी किया जाए और साथ ही साथ अनुशासन और संतुलन यह जीवन में बेहद जरूरी है, जिस व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शांति और खुशी दोनों बनी रहती है जब हम जीवन में अनुशासन और संतुलन दोनों बनाए रखें।

और आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भगवद गीता पाठ किया जाएगा झील सेंटर संध्या 6:30 पर, और विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक होगी हजारीबाग में सुबह 11 बजे से। और फाइलेरिया जांच, बरसात में 302 ग्रामीणों के रक्त के नमूने लिए गए।

और फाइलेरिया पर रात का पहरा। रात 8:30 बजे के बाद नसें टटोल रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। चलाया जा रहा है अभियान। चुरचू प्रखंड के हाथी पांव फलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आधी रात को मोर्चा संभाल लिया है। प्रखंड के 3 चुनिंदा गांव में रात्रि रक्त पट संग्रह यानी नाइट ब्लड सर्वे अभियान

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 MHz पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते अपने मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: शुरुआत करते हैं इस गजल से।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं

0: कुछ अनमोल लगवे
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग
1: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से
1: सदा रही है सदा रहेगी
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

آپ سن رہے تھے یہ غزل چندن داس کی آواز میں. پنکج ادھاس کی آواز.

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार्स में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम।
0: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में. इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था. इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है.

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियां और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पे सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घेराए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया, लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहां पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से, मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सबने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी

साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है। पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमजोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएं खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए। हम सुनवा रहे ये गाना, क्या यही गाना सोचा था आपने कि हम सुनवाएंगे, या कोई और गाना आपने सुना था सोचा था? राजकुमार फिल्म का गाना है। हीरोइन का नाम जरा बता दीजिए आप।

राजकुमार फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है साधना और बहुत सारे श्रोताओं ने तुरंत तुरंत लिख डाला कि इबारत में कौन से गाने थे, किसी ने लिखा है रिमझिम की गिरे सावन, सावन के झूले पड़े, कौन परदेसी मेरा दिल ले गया, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बारिश के आगमन पर आधारित है, सचमुच गर्मी के दिन हटने का संकेत बारिश का आना देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीले सफर में शायद रिमझिम बरसात, सावन के झूले इन्हीं शब्दों के साथ सजने वाली है, और एक श्रोता ने टिप्पणी की है कि रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तो मन भी अनगिनत मधुर यादों में भीग जाता है, झूलों की मस्ती, पवन का शीतल स्पर्श और घर गिरते बादलों के बीच किसी अपने के आने की आस दिल में नई धड़कनें जगा देती है, फिर एक परदेसी मुस्कान के साथ दिल चुरा लेता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें झूले की याद तो ननिहाल के साथ ही छूट गई, ननिहाल

0: की याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 28 तारीख से सावन लग रहा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बारिश की भीगी फुहारों के बीच सावन का सुहाना मौसम, प्रेमी से पहली मुलाकात, दिल का इकरार, जन्म जन्म का साथ, प्रेम के रंग में रंगी चुनरिया, यही पूरी इबारत का भाव है। इसलिए आज का सुरीला सफर में अधिकतर गीत सावन, रिमझिम बारिश, बादल, परदेसी, दिल, प्यार, इकरार, चुनरिया, नूर जैसे शब्दों पर आधारित होंगे।
1: वही बहुत प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला, 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में, विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी, आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू, 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों चर्चा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने तथा आवेदन की हार्ड कॉपी 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के CCL डकरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, CCL और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहूंगा। मुझे याद है जब 2019 में चुनाव में मैं आया था, मैंने वादा किया था अब केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। और उसके बाद 2020 में मैंने प्रश्नकाल में लोकसभा में नई मंगवा फिर केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवाज उठाई और उसके बाद यह आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय जरूर खुलेगा।
1: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के SSP एहतशाम वकारिब ने बताया कि SIT का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
3: 2 जो नीद बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 और 17 ईयर्स के है, उन दोनों को है किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी निरुद्ध किया गया है जुनाइल जस्टिस के तहत।
1: इधर आदित्यपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा और समर्थित संगठनों के बंद का आज व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार समेत 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना है।
4: मशाल जुलूस के स्थल पर उतरे थे रोड पर और आह्वान किए थे आदित्यपुर बंदी का। लोगों प्रशासन के हम लोग सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन हर जगह नाकाम है, इस पर उनका नाकामी साफ साफ दिख रही है और हम लोग स्पष्ट और कड़े शब्द से मैं विरोध

0: करता हूं, हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे।
1: रांची में कांके राम मंदिर से प्रोजेक्ट भवन ध्रुवा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्य योजना पर चर्चा की गई। अभियान के तहत सड़क, फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड और वेंडिंग जोन का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रिम्स में एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार एमबीबीएस सीटें 176 से 250, पीजी सीटें 180 से 275 और सुपर स्पेशलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप भवन, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, फैकल्टी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो जिले के तिलमुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग पुत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार की ओर से पेंशन नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में चकला कोबाइंस क्षेत्र के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदला है। यहां बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की सेविका ने बताया कि निजी कंपनी के सहयोग से आंगनबाड़ी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
2: अभी जो है वैसा पहले नहीं था। अभी यहाँ पे टीकाकरण होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। हमारी सेंटर में यानी मेरे एरिया में जितना भी लाभुक है टोटल जुड़े हुए हैं। संख्या लगभग यहाँ पे टोटल जनसंख्या का आधार पर 1560 है।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 511 अंक चढ़कर 78013 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 160 अंक ऊपर आकर 24336 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। ताइक्वांडो। झारखंड ताइक्वांडो संघ और जिला ताइक्वांडो संघ के तहत 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता लोहरदगा में आज से शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 700 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त संदीप कुमार मीणा करेंगे और उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक और संघ अध्यक्ष सादिक अनवर रिजवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज

0: भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है, जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है, जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं। जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है, जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो, तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला है गीत, बहु बेगम फिल्म। बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। है बहु बेगम।

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है, तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कने रुक सी गई, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार।

घर आ जाए घिराए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में। आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सावन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने

0: और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है, ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा

मस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

बर्मन का संगीत था देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है। और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जरा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहां घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए, और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन, और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज्यादा हो गया था, तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी। फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफर आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्र ध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र,

0: दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
1: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
0: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
1: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को

0: ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठे और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वो खूबी बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की

0: महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में

0: बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक

0: विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।

श्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 कमांडो स्पेशल ब्रांच के 3 अधिकारी 3 वाहन लौटा दिए हैं। मंत्री ने 2 माह पूर्व एक सुरक्षा वाहन मांगा था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जवाब देने के बजाय उनके काफिले से 1 गाड़ी कम करने का आदेश दे दिया। इसे अपमानजनक मानते हुए मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा वापस कर दी। अब वे बिना किसी बॉडीगार्ड के चल रहे हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यात्रा नुनवान, पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सुचारू रूप से चल रही है। सुबह सुबह बेस कैंप से निकले हजारों यात्री बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कठिन रास्तों पर पैदल यात्रा करते हुए देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है वह बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से नरेश बागशा।
2: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए इस यात्रा को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से 5 संकल्प, स्वच्छता नियमों का पालन, स्थानीय उत्पादों पर 10% खर्च, पौधे उपहार में देने और राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने का आग्रह किया। झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम आदेश तक कर्मियों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही नियमित वेतन देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा द्वारा बुलाए गए जमशेदपुर बंद को एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और आजसू पार्टी का पूरा समर्थन मिला है। विपक्षी दलों की इस एकजुटता के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बंद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने बंद को सफल बताया है।
6: लोगों ने अपने ही दुकानों को बंद रखा है, ऐसा स्कूल बंद ही है। हम वो देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। तो अभूतपूर्व बंद हुआ है, लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान परेशान बंद करके रखे हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए कि जमशेदपुर के लोग कितना दुखी है।
2: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद एनआईए ने मुख्य आरोपी अमन अंसारी और सयाम सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। इस हमले के तार दुबई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का संदेह है। आरोपियों पर यूपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। सारंडा जंगल में

0: नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद राज्य पुलिस ने जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 महीने से वहां नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है और मानसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में 10,000 जवान तैनात हैं और बचे हुए 15 वांटेड नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अभियान जारी है।
1: मॉस्किटो से प्रिवेंशन के जो भी एक्टिविटीज हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, दवाइयां उनको दे रहे हैं और इसका एक रोटेशन भी हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब रस्ता टाइप का कोई चीज नहीं रहेगी, सब तितर बितर हो गया और कंटिन्यूस फोर्सेस की अभी भी मोटिवेशन उसी तरह से बनाए हुए हैं, चारों तरफ से फोर्सेस ने घेर के रखा भी हुआ है, सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है और जल्दी भविष्य में अच्छा काम होने की उम्मीद है।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी,
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया। मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी।

0: रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: जी, रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है, कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए, अगर फिलोसफिकल उससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने। और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए
0: जी,
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
0: आलिया बानो बोल रही हूँ, गुजरात से।
1: आलिया बानो गुजरात से?
0: हाँ
1: जी। आलिया बानो, कैसी हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए, क्या चल रहा है इन दिनों?
0: टंकी नवाते पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। घर के जो काम होते हैं ना, छोटे मोटे, वो सब करवा देती हूँ।
1: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है, कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
0: हाँ जाती हूँ ना, परिवार के साथ ही।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है।
1: हाँ वो तो है
0: ना।
1: जी जी, ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे जी,
0: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे। सबसे काल मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना, तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना, कुछ काम करना होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं? यानी कि आप कदम गिन लेती हैं, या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है, दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
0: नहीं, मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है। मतलब आना जाना होता है ना मेरा, अभी जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ना, ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ। हमारा
1: अच्छा।
0: एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ।
1: जी
0: तो
1: जी।
0: मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: अपने आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी, कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं, आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आँखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आँख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए,
0: जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है, फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। आपकी बातें सुनके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है, तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना?
1: जी
0: हाँ। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात,
1: शायरा हूँ
0: जी।
1: जी एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें।
0: पेन नेम है आपका लहरें?
1: लहरें, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी
0: जी,
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।

0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल
1: सुनाइए। और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यू दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हर दम, नींद ही तो टूटती है हर दम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोक राव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
1: हाँ घर में खाना बनाने को जाती, मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
0: अच्छा।
1: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
1: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
0: जी
1: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती हूँ।
0: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं हम दोनों ही रहते हैं, माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और सकारात्मक सोच रख के आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती हैं।
1: मैम मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ बबीता ठाकुर और एक शहनाज शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है, अभी गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयां नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम

0: सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी? सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ,
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ हाँ
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही हैं विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ता उम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारी सखियाँ भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के

0: कैसे रखें, और जो आप
1: हाँ
0: बताना चाह रही हैं
1: तो
0: ना कि नियंत्रण कैसे करें वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन
0: जी
1: हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
0: जी
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा, और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
0: जी बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ, घर ही रहते हैं कुछ
0: जी
1: नहीं।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में

0: भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
1: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
0: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, वो सुनती रहती, काम भी करती रहती।
1: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
0: हाँ जी जी
1: जी। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य सरकार ने कैथी लिपि में लिखे पुराने भू अभिलेखों और खदियान को पढ़ने के लिए कैथी लिपि पाठ्य पुस्तक तैयार की है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर के अनुसार वर्तमान में इस प्राचीन लिपि के जानकारों की कमी के कारण भूमि विवादों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। UIDAI ने आधार ऐप पर मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा शुरू कर दी है। 1 जुलाई से 6 महीने के लिए जारी इस सुविधा से 2 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने ईमेल अपडेट किया। इससे हर ऑथेंटिकेशन का रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आधार की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आज नगर पंचायत सरायकेला के इंदिरा टाणी मोहल्ले में घर घर जाकर SIR कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पदाधिकारियों को त्रुटि रहित और समयबद्ध कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला प्रशासन और CUD लाइफ इंश्योरेंस ने डुमरी के लवाबार में वाटर लिफ्टिंग सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिरमी और ओखरागढ़ में नवनिर्मित विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को सौंपे गए। इस दौरान स्कूल परिसरों में पौधारोपण भी किया गया। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड और लकड़ाटांड गांवों में छापेमारी कर 3 अशातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर DSP अमित कुमार के अनुसार इस कार्रवाई में अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। राज्य के 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में न जाने और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची।
2: पहाड़ों से फिसल कर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली, जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों

की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुझ पाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपने

सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा,

थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाट बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमने

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने

अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा। वे प्रेम में थे या उनके साथ

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने को हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसी जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहां से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलिक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही

0: मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी

0: होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
0: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है। लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें

0: बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी।
0: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ दिन यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हर नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती,

0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला न लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
1: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
2: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
2: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
1: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन। साधु बाबा।
5: बच्चा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मोहलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
5: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
5: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
5: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
5: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है।

0: जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करे कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
5: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
5: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
4: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
5: रानी माँ मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
6: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5 बजने को हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे रांची केंद्र से।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि क्यूआर कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता

0: अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया। देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें OPD और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंध ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में आज मिशन परिवार विकास अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 3 महीनों तक जिले के विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को परिवार नियोजन, सही उम्र में विवाह और बच्चों के बीच सुरक्षित अंतर रखने के प्रति जागरूक करेगा। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में कम अनाज देने वाले डीलर और मोहनपुर प्रखंड में म्यूटेशन मामलों में लापरवाही की जांच के लिए समिति गठित की है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए उन्होंने अवैध भूमि कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। संध्या के 5:02 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एमएस धोनी से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल हैं मनोज मुंतासिर के और संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

चेन्नई एक्सप्रेस, आपने सुना इस फिल्म का गीत चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मैं हूं ना फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया है इस गीत को, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन को आप सुन रहे थे सत्यमेव जयते टू में। इस गीत को लिखा मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया रोचक कोहली ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष्क बागची की आवाजें हैं।

राहत फतेह अली खान के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी से दीजिए अंजना को इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी ग्रामीण भाई बहन के सब इनके मीनाक्षी बहन के दने से जोहार प्रणाम आराम राम और सभी गोटे के अपन कार्यक्रम में स्वागत हन। और हमरा उम्मीद है कि हम इनकर श्रोता सब इन बेस्तरी से होथिन और खेती बाड़ी के काम दाम बेस्तरी से करित होथिन। और अभी अपन अपन रेडियो खोल के अपन कार्यक्रम सुनने ले बैठल होथिन। और हम इन जब भी आवो ही है बड़ी मनी जानकारी के साथ ही आवो ही है कैगो विषय पर बातचीत भी करो ही है। और हम इन अब अपन बातचीत में आगे बढ़िए ओकर पहले सुनो ये जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: तो अभी देखा हम इन देखे ले गली हो कि अभी पानी पड़े ले शुरुआत हो गए हैं और सभी किसान भाई सब इन अपन अपन खेत के काम में व्यस्त हो गए हथिन। कई किसान भाई तो अपन खेत में धान के बिहन लगावे खातिर जोते हथिन, तो कई किसान ऐसे हथिन जो धान के बिहन देखा कि कर दिले हथिन। तो कई किसान मक्का के बुआई करे हथिन, तो कई किसान के देखवा कि बरसाती साग सब्जी के लगावे के लिए तैयारी करे हथिन, या कई गो किसान लगा भी दिले हथिन। उस अपन तो खेती बाड़ी के काम धाम बड़ी मेहनत से करो हथिन। और अगर देखा कि ओकर में अभी जैसन पानी पड़ुआ पड़े लगल है तो कीड़ा के प्रकोप बड़ी ज्यादा हुए है। और उनकर मेहनत करे के बाद अगर कीड़ा लग जाए तो काफी ज्यादा नुकसान के सामना करे पड़ो है। तो देखा कि कीड़ा सबसे बचावे खातिर देखा कि किसान भाई सब इनके कीटनाशक के उपयोग भी करो हथिन किसान भाई सब इन। ऐसे में है कि देखा कि मक्का के फसल भी कई प्रकार के रोग लगो है, उकर में ई रोग लगे से पौधा सबन सूख भी जाहथिन। और जेकर सीधा असर हम इनकर फसल के पैदावार पर पड़ो है, जेकर से मक्का के खेती करे वाला किसान जे मुनाफा मिले के चाही वो मुनाफा न मिलो है। एहे लेल हम इनके किसान भाई सबन के चाही कि ओकर में काका लोग रोग लगो है ओकर बारे में जानकारी रखे के चाही, ताकि देखा कि वो रोग से हम इन अपन फसल के बचा सको ही। तो देखा कि ओकर खातिर फसल के बचावे खातिर हम इनके काका उपाय करे ले जरूरी हुए है। ओकर पहले हम इनके जानो के चाही कि ओकर में काका रोग लगो है, जैसे कि पत्ती झुलसा रोग लगो है, मेडिस पत्ता अंगमारी रोग लगो है, तना में गलन के समस्या हो है वो रोग लगो है, कई फफूंदी नाशक रोग लगो है, फफूंद लगे वाला रोग लगो है। तो देखा कि इस सब से बचावे खातिर हम इनके ध्यान दिए के जरूरी है। और जैसे कि पत्ती झुलसा रोग जो हो गलो, झुलसा रोग लगे से हो का है कि पौधा सब इनके पत्तियन भूरा रंग के धब्बा उभर लगो है ओकर में पौधा सब में। और साथ ही देखा कि पौधा के निचली पत्तियन जो है सूखे लगो हथिन और फिर ओकर ऊपर के पत्तियन भी सूख जाहथिन। ई रोग से बचा रोके खातिर देखा कि नीम के तेल के पानी में मिला के छिड़काव कर दिए के चाही, तेकर से एकर ई रोग से बचाव करल जा सको है। वहीं देखा कि अंगमारी रोग के बारे में, ई देखा कि फफूंद जनित रोग हो है, ई रोग देखा कि बाइपोलिरिस मेडिस नामक फफूंद के कारण पनपो है। ई रोग से देखा कि पौधा सबन के पत्तियन पर भूरा और सलेटी रंग के धब्बा उभरो है और धब्बा के किनारे किनारे देखबा कि पीला रंग भी हो है। और कुछ दिनों बादे देखा कि पूरा पत्तियन देखबा कि सूख जा है। तो एकर ई रोग से बचावे खातिर देखा कि मक्का के प्रतिरोधी किस्म के चुनाव करे के चाही। और एकर खातिर देखा कि ई रोग से बचावे खातिर 2 ml मैकोजेब के 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करे के चाही।

और देखा कि तना गलन के रोग के बारे में बात करिए तो ई रोग होए से पौधा के ऊपर के पत्तियन मुरझाए लगे हथिन और तना कर नीचे के जे पोर या नरम नरम हो है वो भी देखा कि बदरंग हो जा है, एकर तना गले लगो है और उकर से भी देखा कि अजीब टाइप के बदबू भी आवो लगो है और कुछ दिन बाद देखा कि पूरा पौधा नष्ट हो जा है। ई रोग से बचावे खातिर देखा कि कैप्टन और स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर के पानी में मिला के छिड़काव करे के चाहिए। एकर अलावे मक्का में ईली या सुंडी भी रोग लगो है, एकर ई रोग से रोकथाम खातिर देखा कि कोराजन के छिड़काव करे के चाहिए और दवा के छिड़काव करे के सही तरीका और समय भी जाने के बहुत जरूरी हो है कि दवा के छिड़काव देखा कि सुबह के या शाम के समय के करे के चाहिए और ये भी ध्यान दिए के चाहिए कि दवा के पौधा के बीच के हिस्सा में जरूर जाए के चाहिए। और देखा श्रोता सब अभी आगे भी हम इन बातचीत में बनल रहे, पहले सुनो ये गीत।

0: तो देखा अभी हम इन सुने थलिए गीत, और हमारा उम्मीद है कि गीत सभी गोटे के जरूर बेस लगले होते। और एक पहले हम इन बतियाए थलिए कि मक्का के पौधा में जे मक्का की खेती करना ओकर में कीड़ा लगे के बड़ी संभावना रहा, ओकर से कैसे बचावल जा सको है ओकर कीड़ा से। और देखा कि ओकर में मक्का में देखा तना छेदक कीड़ा भी लगो है, जे ई कीट जे है वो तना के अंदर देखा कि छेद करके पौधा सबके सुखा दे है, जेकर से बचावे खातिर देखा कि क्लोरोपाइरीफॉस के भी पत्तियन पर छिड़काव करे के चाही। और साथ में देखा कि दीमक भी लगे से भी पौधा के जे अंकुरन होवे के समय खास करके देखा कि जड़ के नुकसान पहुंचो है, तो एकर से भी देखा कि बचावे खातिर बुआई से पहले देखा कि बीज के अगर हम इन उपचारित करके लगाइए तो ये प्रकोप से देखा हम इन बचा सको ही। और देखा साथ में ये भी ध्यान दे के चाहिए कि अगर हम इन देखा कि गर्मी के दिन में देखा कि खेत के गहरा जुताई कर दिए तो जमीन में जे भी छिपल कीड़ा मकोड़ा हो है ओकर अंडा नष्ट हो जाए, जेकर से भी हम इन अपन फसल के बचा सकुई है। और साथ में देखा कि मक्का के साथ देखा कि अरहर और लोबिया जैसन फसल लगावे से भी देखा प्राकृतिक रूप से हम इन कीट के से बचा सकुई अपन मक्का के। और देखा कि साथ में है कि फसल के फसल लगावे से में के लिए हमें अगर फसल चक्र पद्धति अपनाइए तो भी हम इन कीड़ा के प्रकोप से बचा सको ही है। और साथ में देखा कि हम इनके जे भी अनावश्यक रूप से देखबा कि तू कि मक्का लगावे समय में देखा कि पौधा जब छोटा छोटा हो हथिन तो देखा कि खर पतवार काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे, साथे साथे उग जाते हैं ओकिन जो पौधा के एकदम छोटे पर एकदम बढ़वा रोकन कर तेजी से हो जाए है, और जो फसल लगल है ओकरा ओकिन दबा दे हथिन नुकसान पहुँचाव हथिन। अगर एकर से बचावे खातिर बायर लाउडिस एगो दावा हो है वो देखा चौड़ा पत्ती और संकरा पत्ती वाला खरपतवार के खत्म करे में बहुत मददगार हो है। और इंट्राजिन दवा भी देखा कि बुआई के तुरते बाद अगर शुरुआती दिन में नमी होवे पर एकर इस्तेमाल करे से खरपतवार के उगे से ओकरा रोकल जा सको है। और फंगस के समस्या से बचावे खातिर कार्बन डाजिम के छिड़काव करे से भी फंगस के समस्या से ये अपन मक्का के फसल के बचावल जा सको है। और आगे भी बातचीत में हम इन बनल रहबे। और अभी देखा कि हम इन पास एगो जानकारी आयल है और ये जानकारी देत हथिन महिला किसान हथिन शकुंती देवी, तो इनकर से देखा ये अपन अनुभव बतावे हथिन कि कैसे ये खेती बाड़ी के काम करो हथिन, तो सुनल जाए जानकारी।
1: श्रोताओं, आज हमारे बीच है एक महिला किसान जो काफी अच्छे तरीके से खेती बाड़ी के कामों को कर रही हैं। तो आपका नाम?
2: शकुंती देवी।
1: शकुंती देवी कहाँ के रहने वाले हैं?
2: कंचनपुर।
1: कंचनपुर, ये कंचनपुर जगह का क्या नाम है?
2: इस जगह का जलमा नाम है।
1: जलमा, तो यानी कि जलमा कंचनपुर के।
2: हाँ।
1: तो आप कब से खेती बाड़ी के कामों को कर रही है?
2: हम 2010 से कर रहे हैं।
1: अच्छा, 2010 से, मतलब काफी समय पहले से कर रही है। तो अभी आप अपने खेतों में क्या क्या लगाई हुई है?
2: अभी तो हम बोदी लगाए हैं, गर्मी वाला मक्की लगाए हैं, कच्चू लगाए हैं।
1: और क्या क्या सब्जी लगाने की तैयारी कर रही हैं?
2: गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी,
1: बरसाती
2: वाला
1: बरसात।
2: हाँ, बैगन, टमाटर लगाएंगे।
1: अच्छा, लगाएंगे। मिर्चा भी लगाएंगे?
2: हाँ, मिर्चा,
1: बैगन।
2: और उसके बाद में धान का
1: बिचड़ा भी, जैसे पानी आ जाएगा तो उसका बिचड़ा भी तैयार करेंगे।
2: हाँ।
1: आपने अभी कहा कि आप कच्चू लगाई हुई हैं।
2: हाँ।
1: तो कैसे लगाई, इसकी जमीन का तैयारी आपने कैसे किया?
2: वो जुतवाई कराए ना।
1: तो जुताई कैसे? गाड़ी से, ट्रैक्टर से जुतवाई?
2: हाँ।
1: अच्छा,
2: ट्रैक्टर से जुतवाई।
1: तो क्या एक ट्रैक्टर से जो जुतवाती है मिट्टी को?
2: हाँ।
1: तो वो क्या एक ही बार जुतवाती है या दो बार जुतवाती है या कितना, मतलब कितना हल्का?
2: मैंने तीन बार जुतवाते हैं।
1: अच्छा, तीन बार,
2: तीन मरतबे, चार मरतबे जैसा।
1: हाँ। और उसके बाद क्या कुछ दिन छोड़ देती है या फिर तुरंत उसमें रोपाई करती है?
2: ना, कुछ दिन छोड़ देते हैं।
1: कुछ दिन छोड़ देते हैं।
2: हाँ, गर्म होने के लिए।
1: अच्छा, उसके बाद उसको फिर से चालते हैं?
2: हाँ,
1: फिर से उसको जोत देते हैं और तब उसका पात बनाते हैं।
2: हाँ।
1: तो इसका पात किस प्रकार बनाया जाता है जो कच्चू का पात है? सो
2: एकदम जैसे आलू का पात होता है, थोड़ा पतला होता है।
1: हाँ।
2: और वो थोड़ा थोड़ा मोटा होता
1: मोटा
2: है।
1: होता है तो हाँ, क्या अब वो गहरा थोड़ा होता है क्या?
2: हाँ हल्का गहरा होता हल्का, है
1: मतलब
2: हाँ,
1: आलू के पात से थोड़ा गहरा जाता होता है
2: हाँ,
1: है ना। तो फिर वो कैसे लगाते हैं पात बना लिए तो फिर?
2: तो उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गड्ढा खोदते हैं
1: हाँ,
2: एक दो दो फीट पर, उसको बाद में उसमें गोबर डालते हैं
1: और फिर
2: खाद डालते हैं DAP खाद, उसको बाद उसको रोपाई करते हैं।
1: अच्छा तो ये जो कच्चू आप लगाती हैं
2: हाँ,
1: मुझे बताइए कि आप बाजार से लाती हैं या घर में ही इसका बिचड़ा तैयार करती हैं?
2: इसको घर में रहता है
1: घर में ही उसका बिचड़ा रखती हैं तो उसी को लगा देती हैं। तो वो मतलब कितनी दूरी पर लगाती हैं आप?
2: बस दो फीट
1: का दूरी पर लगाती हैं। तो लगा करके फिर उसके बाद मिट्टी ढक देती हैं?
2: मिट्टी ढक देते हैं।
1: अच्छा और फिर तुरंत पटाती हैं या एक
2: हाँ,
1: दो दिन
2: तुरंत पटाते हैं
1: उसको? तुरंत पटाना
2: हाँ, तुरंत
1: होता
2: पटाते
1: है
2: तुरंत।
1: तो मतलब वो कितने दिनों के अंतराल में जन्म जाता है
2: वो? 15 दिन के अंतर
1: में। 15 दिन में कच्चू जन्म जाता है, जन्म के बाहर आ जाता है ना?
2: उसको पहले उसको आंकुर तैयार रहता है ना तो बहुत जल्दी।
1: अच्छा उसमें आंख जो निकला रहता है तभी वो रोकते
2: हाँ,
1: हैं
2: हाँ,
1: तो इसलिए वो पटाने का मतलब जैसे आप तुरंत पटाए फिर कितने दिनों के बाद फिर पटाना
2: फिर सूख जाएगा तो पटाएंगे,
1: सूख जाएंगे तब हाँ, पटाएंगे।
2: आजकल गर्मी के दिन है ना
1: तो हाँ, तो उसमें जल्दी थोड़ा जल्दी पटाना होता है। तो आप उसको जब से जन्म गया तो फिर कितने दिनों में चालती हैं या चालना पड़ता है कि नहीं? बिना चाले भी चलता है?
2: नहीं चालना पड़ता है उसको,
1: चालना
2: खुरपी लगाते हैं।
1: अच्छा खुरपी करते हैं मतलब हाँ, उसका खुरपाई करते हैं
2: हाँ।
1: अच्छा तो खुरपाई करके घास उस जो भी जन्मा है उसको हटाते हैं
2: हाँ,
1: है ना
2: हाँ।
1: तो फिर उसके बाद फिर पास चढ़ा दिए
2: हाँ, थोड़ा दिन वो बढ़ेगा तनी पास लाग के उसके बाद।
1: अच्छा पास लाइक मतलब एक चार खुरपाई करते हैं तो कुछ दिन छोड़ दे भी देते
2: कुछ
1: हैं।
2: छोड़ देते हैं बड़ा होता है ना उसके बाद में,
1: उसके बाद फिर उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं।
2: मिट्टी चढ़ा
1: और मिट्टी चढ़ा करके तो उसमें तो सल्फेट भी डालते होंगे तभी तो मिट्टी चढ़ा देंगे ना?
2: सल्फेट
1: डाल
2: यूरिया सल्फेट उसमें हल्का फुल्का DAP खाद
1: मतलब थोड़ा डालते हैं और साथ में गोबर भी डालते हैं क्या फिर?
2: नहीं गोबर तो
1: गोबर शुरू में ही डालते हैं तो हो जाता है। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि फिर उसके बाद फिर उसको तुरंत पटाते हैं?
2: तुरंत नहीं पटाते हैं, जैसे अभी उसमें हाल रहा तो एक आध दिन छोड़ दिए तो उसको बाद में सूखता हल्का फुल्का तब पटाते हैं।
1: तो मुझे ये बताइए क्या इसमें रोग भी लगता है क्या?
2: हाँ
1: बीमारी लगता है?
2: लगता है तो उसमें
1: दवा देते हैं। अच्छा दुकान में जाकर के बताती हैं कि क्या ये रोग लगा हुआ है तो उसके अनुसार वो दवाई भी देता है?
2: वो कीड़ा पत्ता खाने लगता है।
1: अच्छा नीचे हम देखते हैं कि उसके अंदर नीचे में पत्ता के नीचे में वो अजीब टाइप का गांधी टाइप का भी लगता है क्या? वो खा जाता है लगता है नहीं? तो उससे बचाव के लिए दवाई देती हैं? अच्छा तो उससे बचाव के लिए। इसके अलावे आपने कहा कि मक्का भी लगाई है, बोदी भी लगाई है, तो बोदी को लगाने के लिए आपने क्या पात बना के लगाई या फिर लत्तर वाला बोदी लगाई या पौधा वाला बोदी लगाई?
2: पौधा वाला
1: लगाई। तो उसके लिए भी पात बनाई होंगी?
2: झोरा बनाते हैं,
1: झोरा बनाए। अच्छा तो ये जो आप कच्चू लगाई हैं वो कितने दिनों में तैयार हो जाता है?
2: 3 महीने 4 महीने में?
1: 4 महीना लगता है उसको तैयार हो जाता है। तो मतलब आपका तैयार होने की स्थिति में होगा?
2: वो यही अभी कौन महीना है?
1: जेठ।
2: वो जेठ छोड़िए ना,
1: जेठ महीना है,
2: जेठ है ना। अगर जून पड़ गया ना तो हम लगाए हैं मई में।
1: अच्छा 2 महीना।

0: और लगेगा।
1: हाँ अच्छा,
0: तो
1: मतलब
0: मतलब अभी लगाई है और वो तो कुछ महीनों में हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद आप बोधी के बारे में भी बता रही थी कि वो उसको पांत बना के लगाती हैं, तो पांत बना, तो उसके बीजे के बीज लगाने की जो दूरी होती है वो कितनी होती है?
1: बस वही 2 फीट 3 फीट के बाद, 2 2 फीट
0: 2 फीट या 1 बित्ता
1: ऐसे।
0: या 1.5 बित्ता के अंतराल में?
1: हाँ उतना ही रहता,
0: एक एक मतलब 5 इंची 6 इंची की दूरी पर
1: दूरी रहता है ना, पौधा बढ़िया फैलता है।
0: अच्छा,
1: और नजदीक नजदीक दे दीजिएगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है।
0: वो उसका जन्मेशन बहुत अच्छा नहीं था, वो फैल नहीं पाता है तो
1: नहीं, जन्मेशन तो अच्छा दिखने लगेगा लेकिन जो दूरी रहेगा ना वो पौधा फैलेगा।
0: अच्छा, पौधा फैलेगा।
1: हाँ
0: हाँ हाँ अच्छा, तो उसको लगा करके बीजा लगा के तुरंत पटा देती है?
1: हाँ
0: है ना।
1: हाँ।
0: तो पटाने के बाद फिर कितने दिनों में उसका पौधा निकल आता है?
1: ओ, 1 सप्ताह के अंदर।
0: 1 सप्ताह में निकल जाता है?
1: हाँ।
0: अच्छा, 1 सप्ताह में निकल जाता है। तो फिर उसको चालती कितने दिनों में है? मतलब
1: हाँ,
0: ये
1: जब पौधा निकल
0: मतलब
1: गया, दो दो पत्ता हो गया,
0: दो पत्ता
1: दो
0: तीन
1: तीन पत्ता हो गया, उसको बाद में
0: चालते
1: चालते
0: हैं,
1: एक दो दिन चाल के छोड़ दिए, उसको बाद में फिर मिट्टी चढ़ा देती हैं।
0: अच्छा, फिर मिट्टी चढ़ा देती हैं। तो फिर ये फल कब देने लग जाता है, कितने दिनों में?
1: फल वही 2 महीने।
0: अच्छा, तो हमने ये देखा है कि बोधी में गांधी बहुत लगता है, रोग बहुत लगता है, कई बार देखें कि फल आता ही नहीं है, पूरा एकदम से कीड़ा उसको खराब कर
1: दवा
0: लग
1: देना
0: है।
1: पड़ता है,
0: दवा देना पड़ता है। तो दवा कैसे, अपने से भी देती हैं या बीज दुकान में ही जा करके बोलती हैं तो उसके अनुसार?
1: बीज दुकान में बोलते हैं, उसके बाद में वो देते हैं दवा।
0: अच्छा,
1: तो वही अनुसार जैसी वो बोलते हैं वैसे ही देते हैं।
0: तो आपके यहाँ पानी पटाने का क्या साधन है?
1: मेरा यहाँ मशीन है।
0: मशीन, तो मशीन कैसे, मतलब कुआं है या
1: कुआं
0: चापाकल है?
1: है,
0: तो कुआं में मशीन लगाई हुई है, उससे पानी पटाती हैं। तो जैसे अभी गर्मी चल रहा है तो आप क्या रोज पानी पटाती है क्या, एक दिन के अंतराल में?
1: एक दिन के 2 दिन के अंतराल में,
0: एक दिन 2 दिन के अंतराल में, मतलब जमीन सूख गया तो फिर पानी पटाती है। ये तो हो गया पौधी के बारे में। इसके अलावा और क्या लगाने की तैयारी में है?
1: बस अभी हम शकरकंद ही लगाएंगे।
0: अच्छा, शकरकंद लगाएंगे।
1: हाँ।
0: तो शकरकंद लगाने के लिए कैसे तैयारी करते हैं वो जरा थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: शकरकंद लगाने के लिए अभी हम 3 मरतबे जुताई कर दिए हैं।
0: अच्छा, जुताई कर चुकी है
2: उसका, फिर पांच बनाएगा।
0: तो फिर उसके बाद 3 बार जुताई कर दी है,
1: एक मरतबे और जुताई करेंगे उसको।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: मुलायम हो जाएगा उसको बाद
0: मतलब बहुत ज्यादा हल्का करना होता है, काफी हल्का करना होता है मिट्टी को।
1: हाँ, उसको बाद हम बड़ा बड़ा
0: पांत बनाएंगे।
1: हाँ, इतना मोटा मोटा पांत बनाएंगे,
0: 2 3 बित्ता जैसा।
1: हाँ,
0: 3 बित्ता का तो।
1: हाँ, 3 बित्ता,
0: 3 बित्ता इतना मोटा पांत बनाएंगे।
1: 2 बित्ता हुआ।
0: हाँ,
1: 1 बित्ता,
0: 3 बित्ता का मोटा पांत बनता है।
1: हाँ,
0: लंबा लंबा,
1: और उसको रहता है लहर रहता है उसको।
0: शकर, तो फिर वो रोपती कैसे है आप?
1: उसको हम रोपते हैं, जैसे पांत हो गया उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा हल्का मट्टी ऐसी कर देते हैं बीच में, झोरा चीरने जैसा, बस हल्का हल्का, ज्यादा नहीं देते हैं उसमें, DAP खाद देते हैं हल्का हल्का, उसको बदलर के हम रोप देते हैं और दोनों तरफ से मिट्टी दबा देते
0: तो
1: हैं।
0: तो लर रोपने से पहले क्या शकरकंद को कहीं लगाते होंगे तभी तो?
1: हाँ, उसको लगा देते हैं पहले।
0: हाँ, हाँ।
1: अभी तैयार, मेरा बारिन तैयार है अभी,
0: वो लगाने के लिए लर तैयार हो चुका है।
1: हाँ,
0: अच्छा, तो यानी कि उसको पहले मतलब एक तरह से कहिए तो नर्सरी टाइप का कर लेते हैं क्या?
1: हाँ, हाँ।
0: एक जगह करके तो उसका लर तैयार। तो फिर वो नर्स वो लर को काट कटिंग कर करके तब फिर लगाते हैं।
1: हाँ, तीन तीन मैंने तीन तीन बित्ता पर, दो दो बित्ता पर
0: वो लर
1: के काटते हैं। और उलर के जितना उलर है उसको रोज पत्ता ऊपर आना चाहिए और उलर को नीचे दबा देते हैं, इसी करके जमीन में घुसा देते हैं और दोनों तरफ से मट्टी चढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, फिर उसके बाद तो कितना दिन में फिर वो तैयार होता है? फिर क्या उसको चालते भी हैं?
1: हाँ, हल्का हल्का चाल के और उसको फिर मट्टी
0: फिर चढ़ाते हैं। तो कितने, तो फिर वो पानी कितने दिनों के अंतराल में पटाते हैं?
1: पानी अब नहीं पटाएंगे उसको,
0: बस
1: पानी पड़ेगा बरसात में उसको बाद में हम लगाएंगे। और यदि पानी वैसा लगाने के बाद नहीं पड़ता है
0: तो पेट पटाते हैं,
1: तब हम बाल्टी से हल्का हल्का जग उग से पानी दे देंगे।
0: अच्छा।
1: लगने वास्ते, और पानी पड़ गया तो और अच्छा बात है। बस
0: तो फिर ये तैयार कितने समय में हो जाता है?
1: तैयार वही हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर
0: हो जाएगा। तो इसमें क्या रोग लगता है क्या?
1: नहीं, इसमें तो लगता है तो हल्का फुल्का, तब वही ऊपर से छिड़काव मार देते हैं दवा का। अच्छा पत्ता पर।
0: तो शकुंती देवी जी, क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी? खेती बाड़ी करना फायदेमंद है।
1: हाँ।

0: मतलब अच्छे तरीके से खेती बाड़ी किया गया तो
1: हाँ।
0: काफी फायदा देता है।
1: हाँ
0: अच्छा, तो शकुंती देवी जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हम इन सुने थलिए जानकारी और जानकारी हले कच्चू के बारे में, बोदी और शकरकंद के बारे में, महिला किसान खेती करो हथिन और उनके बारे में बेस्तरी से बतलथिन कि कातरी अपन खेती बाड़ी के काम करो हथिन। और हमारा उम्मीद है कि जानकारी से सभी गोटे जरूर लाभ उठेथिन और अब देखा कि जानकारी में आगे बढ़ल जाए और देखा हम इनकर किसान भाई सबन खेती के साथे साथे पशुपालन के भी काम करो हथिन और पशु सभिन के बेस्तरी से रखे खातिर भी जरूरी हुआ है कि जानवर सभिन के खाली भोजन और पानी ना दिए के चाहिए, बल्कि ओकर रहे खातिर बेस आवास की भी जरूरत हुआ है, ओकर हमेशा देखा बेस्तरी से ओकर चिकित्सीय जांच भी जरूरी हुआ है और समय समय से देखभाल भी बड़ी जरूरी हो ताकि ओकिन सबके स्वास्थ्य बेहतर बेस बनल रहते हैं। और पशु सब देखा कि मौसम बरसात के मौसम जो है वह है ओकर में देखा कि नमी और उमस के कारण भी पशु सब के कई प्रकार के संक्रामण रोग लगो है, जैसे गला घोटू हो गलो, थनैला हो गलो, खुरपका हो गलो, मुंहपका हो गलो, परजीवी रोग देखा कि जू हो गलो, किलनी हो गलो और देखा कि फंगस के भी खतरा बढ़ो है और यही लिए जरूरी हुआ है कि उनकर आवास सूखा और हवादार रखे के जरूरी हुआ है। कोशिश करे के चाहिए, हमेशा ध्यान दिए के चाहिए कि दूषित पानी ना दिए, देखा चारा एकदम देखा कि पुरान चारा ना दिए के चाहिए, एकदम नावा ताजा चारा हमेशा दिए के चाहिए और समय से उनकर मानसून के पहले ही देखा कि उनकर टीकाकरण करा दिए के चाहिए। और उनकर जो पशु आवास हुआ है वो देखा कि ऊंचा स्थान में बनावे के चाहिए ताकि पानी बारिश के पानी अंदर ना भर सके और देखा कि जल जमाव न हो सके। ओकर अलावे देखा कि ओकर में ओकर जे शेड हुआ है ओकर में ताजा हवा और रोशनी के भी बेहतर व्यवस्था हुए के चाहिए और साथ में देखा कि ऐसा ढालू नुमा हुए के चाहिए जेकर से कि हुए और खुरदुरा हुए के चाहिए ताकि देखा कि वो जे गोबर करो है मलमूत्र करो है वो आसानी से बह सके। और एकर साथे साथे समय पर देखा कि ये बरसात के मौसम में पेट में कीड़ा और लीवर और फ्लू जैसे तेजी से पनपो है से ओकरा कीड़ा मारे के भी दवाई पशु सबके साथ जरूर से दिए के चाहिए। और यह जानकारी के साथ अब कार्यक्रम से विदा लिए के समय हो गए है तो कार्यक्रम खेतीबाड़ी से हमारा मीनाक्षी के अनुमति देथिन जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबारी एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 5:59 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने जनता की समस्याओं के निवारण के लिए कटकमदाग प्रखंड से जनसुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमीन विवाद, आवास योजना, राशन कार्ड जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे और प्रखंड कार्यालय की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पहुंची 13 कंपनियों ने लगभग 50 बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ते हुए ऑफर लेटर सौंपे। रामगढ़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त ऋतुराज सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और समाज सेवियों ने निक्षय मित्र की भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को पोषण पोटली उपलब्ध कराई। इस सराहनीय पहल में जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय डॉक्टरों ने स्वेच्छा से वित्तीय सहायता प्रदान की। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के किताहा तू गांव में 75 वर्षीय इतवारी देवी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। डायन के संदेह में पड़ोसी दीने मुंडा और मंगल मुंडा ने धारदार हथियार से हमला किया था। एसपी ऋषभ गर्ग के निर्देश पर गठित टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद में होमगार्ड भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को उपायुक्त अजय रंजन से मिलकर मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन जल्द पूरा करने की मांग की। 2017 की लंबित बहाली का असर पड़ने की आशंका पर उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि वर्तमान प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी और शेष औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:03 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही हमारी सभी बहनों का स्वागत करते हैं। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। बहनों, एक परिवार में स्त्री की क्या जिम्मेदारी होती है ये तो हम सभी जानते हैं। इनमें से सबसे जरूरी और सबसे अहम है बच्चों की परवरिश। बच्चे देश और समाज का भविष्य तो है ही, साथ ही वे परिवार की नींव होते हैं, जो आगे चलकर अपने साथ साथ परिवार को भी संभालते हैं। बच्चों में अच्छे संस्कार हो तो उनके साथ परिवार को भी शाबाशी मिलती है। एक माँ बच्चों की पहली गुरु होती है। पहली शिक्षा वह घर में ही पाता है। घर के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वे उनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे अच्छे संस्कारों को सीखते हुए बड़े हों। बहनों, बच्चों का यह प्राकृतिक स्वभाव होता है, जो वो देखते हैं, सुनते हैं, उसकी नकल बहुत जल्दी करते हैं। जहां तक बच्चों में अच्छे संस्कारों को विकसित करने की बात है, तो सबसे पहले घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। बच्चों को एक आदर्श, जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बनाने के लिए उनमें कुछ बुनियादी नैतिक मूल्यों और संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। यही संस्कार उनके भविष्य की नींव मजबूत बनाते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ही बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है। माता पिता, बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, बात करते समय बड़ों को आप करके संबोधित करना, थोड़े बड़े होने पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना सिखाना, दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना, जरूरतमंदों की मदद करना, अन्य लोगों या जानवरों के प्रति दया का भाव रखना, धार्मिक संस्कारों के साथ साथ ईश्वर और बड़ों को धन्यवाद देना, क्षमा मांगना, माफ करना, अपनी चीजों को भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना आदि। बहनों, बच्चों को अनुशासन में रहना भी सीखना चाहिए ताकि वे अनुशासन के साथ समय के महत्व को भी सीख सके। हर चीज पाने की जिद उन्हें बिगाड़ देती है, इसलिए उन्हें उनकी जिद पर नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार उन्हें चीजें लाकर दें। इससे बच्चा धैर्य रखना सीखेगा, अपने छोटे छोटे काम खुद करना, जैसे कि खिलौना या अन्य चीजों को सही जगह पर कैसे रखना है, ये सिखाएं उन्हें, और इससे उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास होगा। दूसरों की बातों को सुनना, समझना और उन्हें सम्मान देना, ये सभी बातें छोटी जरूर है, लेकिन ये ही सही जीवन का आधार है। ये संस्कार किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों की सही परवरिश के लिए जरूरी है। बच्चों में अच्छे संस्कार एक दिन में नहीं आते हैं, ये उनकी उम्र के साथ विकसित होते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: बहनों, अब कार्य

0: क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। विषय है सिलाई कढ़ाई का कार्य स्वरोजगार का बढ़िया जरिया। इसके बारे में बता रही हैं चांदनी प्रसाद, भेंट करता है ममता कुमारी प्रसाद।
1: आज महिलाएं घर से निकलकर बाहर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही हैं और इसी क्रम में महिलाएं कई तरह के घरेलू जैसे कई घरेलू काम करके आमदनी कमा रही हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं चांदनी प्रसाद से। तो चांदनी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और नमस्कार।
2: नमस्कार
1: चांदनी जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं?
2: हम गृहिणी हैं और साथ में सिलाई कढ़ाई भी करते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आप गृहिणी हैं, अपना घर संभालती हैं, घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के और अन्य सदस्य हैं, उनकी देखभाल करती है, साथ में आप सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं जिससे आपके परिवार की आमदनी होती है और परिवार को चलाने में इस आपकी मदद मिल जाती है। तो हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि ये इस काम की शुरुआत आपने कब से की है?
2: हम मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, उसके बाद मम्मी बोली सिलाई सीख लो, तो सीख लिए। फिर अच्छा लगने लगा तो सिलाई करने लगे। फिर शादी हुई तो थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ा बीच में। फिर जब हस्बैंड साथ रहने लगे तो थोड़ा परेशानी आने लगा घर चलाने में, तो हम फिर सिलाई का काम स्टार्ट कर दिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है चांदनी जी। अच्छा, आप बता रही हैं आप मैट्रिक की, उसके बाद से सिलाई का काम शुरू की हैं।
2: सिलाई के साथ पढ़ाई भी किए, इंटर किए, बीए किए।
1: बहुत अच्छी बात है। आप ग्रेजुएट हैं फिर भी सिलाई के काम को जारी रखा है, इसमें आपको क्या फायदे नजर आते हैं सिलाई का काम?
2: यही हुआ कि घर बैठकर बच्चे लोग का भी देखभाल हो जाता है और साथ में कुछ पैसा भी आ गया सिलाई करके, कहीं जाना नहीं पड़ा।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सिलाई के काम की शुरुआत आपने कैसे की है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारी बहनों को बताइए, जो समझती हैं कि घर में रहने के साथ ही वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाती हैं। कुछ महिलाओं का ये मानना है कि घर का काम ही इतना ज्यादा होता है कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता है कि वो परिवार के आर्थिक वृद्धि के लिए कुछ सोच सके, कुछ आमदनी के लिए सोच सके। तो वैसे में आप क्या चाहेंगे, अपनी परेशानियों को थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए, हमारी जो बहनें और रेडियो पर आपके कार्यक्रम को सुन रही हैं उन्हें थोड़ा सा उत्साह मिले काम करने का, इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी परेशानियां हम सबके साथ साझा करें।
2: घर बैठे ऐसे भी सुबह काम हो जाने के बाद 12 बजे के बाद मतलब महिलाएं बैठी ही रहती है, इधर उधर ना जाके घर में आराम से कपड़ा सी लिए, कुछ पैसा भी आ जाएगा, साथ में घर में बच्चा लोग भी देख, छोटा बच्चा है तो देखभाल कीजिए, बीच बीच में टाइम निकाल के सिलाई भी कीजिए, फिर वही सब कीजिए आप, फिर इधर उधर थोड़ा हो गया जाना आना, इधर थोड़ा उतना करिए घूमिए फिरिए भी, लेकिन बीच में सिलाई भी कीजिए, पैसा भी आएगा, घर चलने में भी हेल्प हो जाएगा, हस्बैंड का भी हेल्प हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि महिलाओं के पास काफी वक्त होता है जिसमें वो इधर उधर की बातें करती हैं, बैठ करके समय बिताती हैं, उससे अच्छा है कि वो कुछ भी इस तरह के काम करें। चांदनी जी, शुरुआत जब आपने की थी इसकी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत आपने कैसे की थी?
2: हाँ, जब हम एक बार हुआ कि हम ब्लाउज साड़ी खरीदे और कम टाइम था, तीज का टाइम था, इतना जल्दी कोई सिल नहीं देता, तो हम सोचे खुद ही सिल ले, मशीन भी नहीं था अवेलेबल घर में, तो हम दूसरे के यहाँ जाके सिले, लेकिन वहाँ हमको बहुत अच्छा नहीं लगा दूसरे के यहाँ सिलने में, तो फिर हम खुद मशीन खरीदे, फिर खुद सिलने लगे, फिर अगल बगल की महिलाएं भी बोली अच्छा सिलती हो, तो वो लोग भी फिर सिलवाने लगी, फिर धीरे धीरे करके मेरा काम बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, फिर हमको खुद अच्छा लगने लगा, पैसा आया जब हाथ में
1: बिल्कुल,
2: तो फिर हम खुद काम धीरे धीरे बढ़ाए, फिर इधर उधर महिलाओं को सिखाने भी लगे, जिससे और मेरा मतलब काम बढ़ता चला गया आगे की ओर, फिर हम सिलाई करने के साथ सिखाने भी लगे, आमदनी भी अच्छी होने लगी।
1: चांदनी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप खुद अपना ब्लाउज सिलने के लिए आपको दूसरे के यहाँ जाना पड़ा शुरुआत में, क्योंकि आपके पास मशीन नहीं था, और यहीं से आपकी ये जो सिलाई का काम है उसकी शुरुआत हो गई। तो अभी आप क्या क्या बना रही हैं वो बताइए।
2: अभी लेडीज की सारे चीजें बनाती हूँ, ब्लाउज है, पेटीकोट है, डिजाइनर ब्लाउज भी हो गया, सूट सलवार हो गया, आजकल जो भी सूट में जो कटिंग आ रहा है वो सब बनाती हूँ, साथ में लहंगा भी बनाती हूँ और थोड़ा बहुत स्कूल ड्रेस भी बना लेती हूँ और बच्चे का भी कपड़ा बनाती हूँ कुछ कुछ।
1: चांदनी जी, अभी आपने मुझे लहंगा ये दिखाया, बहुत ही खूबसूरत लहंगा था, आपका जो ये डिजाइनर सूट है वो भी मैंने देखा है और डिजाइनर ब्लाउज भी आप बहुत खूबसूरत बना लेती हैं। चांदनी जी, आप बता रही हैं कि आप डिजाइनर लहंगा भी बना लेती हैं, तो अभी तो लहंगे की कीमत मार्केट में मुझे लगता है जहां तक कि बिल्कुल सिंपल भी लहंगा हो तो 4000 से नीचे नहीं मिलता है, तो हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि आपका मुनाफा कितना होता होगा। जैसे इसमें मान लीजिए एक सिंपल लहंगा आपको बनाने का ऑर्डर आया, तो इसमें लागत जो है वो कितनी होती है और मुनाफा कितना होता है उसके बारे में बताइए।
2: सिंपल लहंगा अगर हम खुद बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे तो 2000 तो खर्च आ ही जाएगा और फिर उसमें आप चुनरी उनरी अगर खुद खरीदिएगा तो वो भी हो जाएगा। ब्लाउज बनाइए डिजाइनर लहंगा के साथ में लैस उस जो लाना पड़ता है, तो अगर हम किसी और का बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें भी फायदा है और वही हो गया लहंगा के लिए जितना आपको जैसा घेरा चाहिए उस हिसाब से कपड़ा मंगवाते हैं हम, अपना ग्राहक को बोलते हैं इतना लेके आइए इतना में हम करेंगे, उसके बाद जो हम अपना बेनिफिट देखते हैं उस हिसाब से उसको रेट बताते हैं बनने के बाद कितना खर्च आया। और तो मतलब जैसा हम जाएंगे गोटा खरीदने लैस खरीदेंगे तो जैसा पैसा लगाएंगे उस तरह का सामान होगा
1: जी जी।
2: तो ग्राहक अगर अपना पसंद से ला के देता है तो भी लगाते हैं, खुद बोलता है लगाने तो खुद भी लगा देते हैं, उसी में देख लेते हैं जितना भी हो
1: जी जी। यानी कि इसमें कहिए कि एकदम डबल फायदा है ना, अगर मान लीजिए हम 2000 इसमें लागत लगाते हैं तो 4000 हमको, चूंकि शादी के सीजन में इसका डिमांड काफी होता है इसलिए ज्यादा कीमत आपको मिल जाएगी। और उसी तरह रहा ब्लाउज की बात, तो ब्लाउज का डिमांड तो हर वक्त होता है शादी का सीजन हो या ना हो।
2: जी हाँ, ब्लाउज का तो डिमांड हमेशा होता रहता है, आजकल टेलर पास देख लीजिए धोती पैजामा का 250 मांगता है जबकि हम लोग घर में 150 में बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
2: तो हम लोग 150 में बनाते हैं तो 150 से 200 भी बोल सकते हैं, उसमें भी हम लोग का फायदा है
1: जी।
2: अच्छा सिलेंगे तो जरूर बेनिफिट होगा
1: जी बिल्कुल। तो चांदनी जी, इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने समय का सही उपयोग कर सकती हैं, घर में रहते हुए भी वो आमदनी कमा सकती हैं, और आज तो सिलाई की इतनी डिमांड है कि महिलाओं को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पता चल जाता है किसी महिला को कि वहां सिलाई हो रहा है तो उनके पास ऐसे ही डिमांड आ जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि टेलर के पास जब त्योहार में या शादी ब्याह में हम जाते हैं तो वहां पर वो लेते नहीं है, जल्दी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इतनी डिमांड होती है, इतना सामान पहले से ही बुक होता है कि वो अगला लेना नहीं चाहते हैं। और वैसे में अगर किसी घर में कोई महिला बहुत अच्छी तरह से बना रही है कोई कपड़े और किसी को एक बार पसंद आ जाए तो दोबारा वो फिर टेलर के पास भी नहीं जाना चाहती है, वो उसी महिला के पास जाती है जो सिलाई करती है। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम सुनते हैं कि इस कार्यक्रम को जो महिलाएं सुन रही होंगी उन्हें भी आपकी बातों से कुछ जरूर ही प्रेरणा मिलेगी, वो घर बैठे काम कर सकती हैं और आमदनी अपने परिवार की बढ़ा सकती हैं। तो चांदनी जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता। सिलाई कढ़ाई का कार्य स्वरोजगार का बढ़िया जरिया, इसके बारे में बता रही थी चांदनी प्रसाद। भेंट करता थी ममता कुमारी प्रसाद।

बहनों, एक माँ और बच्चे का रिश्ता उसके जन्म से पहले से ही जुड़ा होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बच्चों के सही विकास के लिए संतुलित आहार, उचित दिनचर्या, हल्के व्यायाम और डॉक्टर्स की सलाह पर जरूरी दवाएं लेना आवश्यक होता है। घर की दादी नानी और महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि गर्भवती स्त्री की उचित देखभाल की जाए। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दिनों बच्चे को सही पोषण न मिले तो शिशु के विकास और वृद्धि में कमी आती है, जिससे कि एक अस्वस्थ शिशु का जन्म होता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए पौष्टिक आहार लेना सभी के लिए जरूरी है, इसलिए यह अति आवश्यक है गर्भावस्था के समय महिला को पौष्टिक आहार दिया जाए। इसके लिए किसी विशेष आहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस महिला और बच्चे को आवश्यक पोषक तत्वों का सही संतुलन प्राप्त करने के लिए हर दिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए जाएं। भोजन में विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी होते हैं। भोजन ऐसा हो बनो जिनमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। प्रतिदिन कम से कम 5 भाग विभिन्न प्रकार के ताजे फल और सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना चाहिए। फलियां, दाल, मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, साबुत अनाज आदि भोजन में शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कुछ चीजों को ना खाने की सलाह भी दी जाती है। इसके लिए डॉक्टर्स और अनुभवी लोगों की सलाह जरूरी है। भोजन के साथ साथ उचित मात्रा में यानी कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। चाय कॉफी का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अधपक्य चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहनों, आहार में आयरन की उचित मात्रा हो तो इससे खून में कमी नहीं होती है। एक महिला को गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार दी जाए तो माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह बच्चे का सही विकास करता है, माँ को ऊर्जा प्रदान करता है और प्रसव के वक्त या प्रसव के बाद परेशानियां कम होती है। यह प्रसव के बाद जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। संतुलित आहार भ्रूण के अंगों, हड्डियों और मस्तिष्क के विकास में मदद तो करता ही है, साथ ही यह माँ को एनीमिया और थकान से बचाता है। फोलिक एसिड की बात करें तो यह बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। वहीं बच्चे के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो गर्भावस्था में डॉक्टर्स की देखरेख में खान पान में विशेष ध्यान दिया जाए बहनों, तो माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहेंगे।

बहनों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंगना से जाने का वक्त हो चुका है। फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंगना, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं जानवर फिल्म का गीत, उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजें हैं, समीर के बोल संगीत, आनंद मिलिंद का।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया इस गीत को। फिल्म का नाम है माशूक।

आप सुन रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का गीत। अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया इस गीत को, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने पर घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि क्यूआर कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें।
1: एक एक वोटर के लिए अलग अलग गणना प्रपत्र रहती है, उसके क्यूआर कोड के साथ उनका फोटो के साथ में सहित रहती है। एप्लीकेशन बनने के समय कुछ गलती हो गया तो उसका वहां पर बीएलओ बीएलओ करने सुधार करने, फिर भी उसका कोई वोटर का डरने के लिए आवश्यक नहीं है। आपको फॉर्म में कोई गलती है, नोटिस एंड हियरिंग पीरियड में भी उस सुधार कर सकते हैं। आप सिग्नेचर करके बीएलओ के पास जमा करने के बाद बीएलओ से दूसरा कॉपी से एक रिसिप्ट ले लीजिए, आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल में आपका नाम आएगा।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड को वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच लगभग 14,231 करोड़ रूपये की अनुदान राशि मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेसवार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार की मांग की है। उन्होंने सफल जमशेदपुर बंद को सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश बताया। राज्य के
2: जमशेदपुर और आदित्यपुर ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी किया और स्वतः स्फूर्त बंद को समर्थन जिस प्रकार से उस लोह नगरी में अपने नागरिकों का मिला है, कंपनियां भी इसमें सहयोग की है, इसका जो समर्थन किया है ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर के वासियों ने दिखलाया है अपने प्रतिरोध से कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, एक आम जनता का प्रतिरोध है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 गार्ड और कारकेड की गाड़ियां वापस कर दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है।
3: ये बात सही है, मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी, मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूंगा, लेकिन इतनी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
0: देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें OPD और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंधक ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आज विधायकों के लिए साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद महुआ माझी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कानून को और अधिक सख्त बनाने की मांग की।
1: बहुत ही चिंता का विषय है। इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है और शायद ही कोई ऐसा घर है जहां के लोग इससे त्रस्त ना हो, तो इसके लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धाराओं को इस तरह से लगाना होगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया, जिससे अब उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
2: 30 साल से जो मेरे जमीन थे उनका रसीद नहीं कट रहा था, बहुत टाइम से मैं परेशान थी। तो मैंने डीसी सर से आकर के मिला और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया एसी सर को, तो मेरा काम हो गया। काफी परेशानी हुई थी, जैसे मुझे जमीन से ही कुछ काम करवाने हो तो उसमें रसीद क्लियर चाहिए, या फिर मुझे ओबीसी बनवाना हो तो उसमें भी रसीद क्लियर चाहिए।
0: पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य

कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और पत्रकार कल्याण योजनाओं पर भी विचार साझा किए गए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसुकीनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने रूट लाइन, शिवगंगा और टेंट सिटी सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं देने का निर्देश दिया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। आज गुमला और लातेहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। 5 जुलाई को पलामू प्रभाग और 6 जुलाई को रांची तथा हजारीबाग सहित मध्य भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला सहित राज्य के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने से घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे ने, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावर, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले के अंचल सभागार में सोमवार को जनवितरण प्रणाली के सभी डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसओ खुशबू तिर्की ने राशन वितरण, ईकेवाईसी, ग्रीन कार्ड एवं चना दाल वितरण सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उधर अड़की प्रखंड क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में मंगलवार को देर रात छापामारी कर अड़की थाना पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के 460 बोतल अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि हब्लू डब्लू के फास्ट फूड दुकान में गुप्त तरीके से अवैध और मिलावटी शराब बिक्री किया जाता था। इस संबंध में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया,
2: अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापामारी की गई। उस छापामारी में कुल 460 बोतलें बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद अवैध तरीके से कागजात की मांग की गई तो उन्होंने कोई कागजात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और FIR दर्ज की गई, जिसमें दुकान के संचालक जो लाइसेंसधारी है उनका भी नाम सामने आया है, जो अवैध तरीके से शराब की खरीद बिक्री करी हो रही है।
1: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग खूंटी द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को आयोजित किए जाने वाले चावल दिवस के तहत जिले के जनवितरण प्रणाली दुकानों में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उराव ने बताया,
3: खूंटी के जो उपायुक्त है निर्देशानुसार हर माह के 2 तारीख को

0: चावल दिवस मनाया जाता है। चावल दिवस का मेन उद्देश्य है कार्डधारियों को जागरूक करना और उन्हें राशन मिलना। इसमें क्या होता है कि सारे जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है, सारे कार्डधारियों को जानकारी दी जाती है और प्रचार प्रसार करके डीलर के यहाँ जो भी खाद्यान्न हो वो बांटने के लिए सभी कार्डधारियों को सूचित करता है और विशेष अवसर पर राशन का वितरण करता है। और इससे लोगों में जागरूकता आती है, कार्डधारियों में जागरूकता आती है, उन्हें जानकारी होती है कि चावल मिलना शुरू हो गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है।
1: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर प्रगणना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी BLO पूरी सक्रियता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं के बीच प्रगणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उपायुक्त ने बताया,
2: 30th जून से लेकर 29th ऑफ जुलाई तक हाउस टू हाउस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनुमरेशन फेज चल रहा है। इसमें सारे BLOs को, जितने भी हमारे योग्य मतदाता हैं, सभी को आप फॉर्म जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है हाउस टू हाउस। उसके बाद उन्हें 2 प्रति में फॉर्म दिया जाएगा। जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे जो फील्ड फॉर्म होगा वो रिटर्न हमारे BLOs के पास आएंगे, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। तो ये कार्य हमारा लगभग 1 महीने अभी चलने वाला है, 29 जुलाई तक। लोगों से भी अपील रहेगी कि जो भी आपको गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसको टाइमली आप कंप्लीट करके एज सून एज पॉसिबल उसको।
1: इधर गुरुवार को खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ पंचायत में जन समस्या निराकरण एवं परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन कर 92 लाभुकों के बीच 6,57,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
3: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम झनकार।

अलका याग्निक और कुमार सानू को आप सुन रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं दिल फिल्म से, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों ने गाया है इस गीत को।

मैं तेरा हीरो, आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत जावेद अली और नीति मोहन की आवाजों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम झनकार समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। संध्या के 7:30 पे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन है वंदना श्रीवास्तव का। प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: हैं।
1: मेहनत और परिश्रम की भट्टी में जलकर जो खिलाड़ी तैयार होता है उसके पसीने की चमक से ये जहां हमेशा उसे याद रखता है और वही खेल की क्षितिज का सूरज बनकर संसार को रोशन करता है और वही जाबाज खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बनता है। नमस्कार खेल मित्रों, मैं हूँ वंदना श्रीवास्तव, हाजिर हूँ FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर लेकर आपके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन बेस्ड प्रोग्राम खेलेंगे शान से। दोस्तों, मानसून ने दस्तक दे दी है और बरसात हर वर्ष की तरह इस साल भी लेकर आया है बारिश की रिमझिम बूंदे और विश्व में पावर गेम फुटबॉल की मस्ती। तो साथियों, खेलेंगे शान से में होगी झूम के बारिश फुटबॉल और इससे जुड़े रोमांच की, तो बने रहिए हमारे संग। हम आपको देंगे आज भी खेल मंत्र और साथ ही होंगे देश विदेश की प्रमुख घटनाएं जो घटी पिछले सप्ताह, साथ ही आज हम आपको सुनाएंगे हर जीत की कहानी। तो दिल थाम के बने रहिए खिलाड़ियों FM 102.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। चलिए हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं खेलेंगे शान से के पहले सेगमेंट की ओर, जो है ग्राउंड रिपोर्ट। खेल मित्रों, इन दिनों जहां विश्व में फीफा वर्ल्ड कप की धूम मची है, तो दूसरी तरफ अपने झारखंड राज्य में छोटे से गांव से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से जिला स्तर तक और जिला से राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर धूम मची की सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट और लिटिल चैंपियन फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 की। क्या है ये आयोजन बड़े फुटबॉल के, इन संदर्भ में जानने के लिए चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं स्थानीय कजन ग्राउंड जो कहलाता है हजारीबाग स्टेडियम और मिलते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जिला शिक्षा अधीक्षक सर, जिला नोडल पदाधिकारी।

0: अहमियत और जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसके बढ़ावा देने के लिए, आपस में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए इस तरीके के आयोजन जो है वो प्रस्तावित है, जो कि हमारे यहाँ पे प्रखंड स्तर पे बच्चों के बीच में स्पर्धा को बढ़ाएगी और साथ ही साथ वैसे चयनित बच्चे जो प्रखंड स्तर से चयन होकर के हमारे जिला स्तर पे आएंगे और पुनः जिला स्तर पे आयोजन के पश्चात उनको राज्य स्तर पे प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो खेल भावना का जो विकास है हमारे राज्य में, जो खेल की एक सीमा है, उसके विकास में भी सहयोग मिलेगी।
1: तो सर, झारखंड राज्य में 24 जिले हैं और पिछले कई वर्षों से फुटबॉल का ये सुब्रतो मुखर्जी टूर्नामेंट लिटिल चैंप के साथ हो रहा है। हमारे हजारीबाग के बच्चों की स्थिति क्या देखते हैं, कैसा उनका अचीवमेंट रहा है?
0: देखिए, पूर्व में भी हमारे यहाँ से बच्चों ने अपने प्रतिभा का अच्छा और बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें पिछली बार भी राज्य स्तर पे हमारे बच्चों का चयन किया गया था। पुनः अंडर 15, अंडर 17 और लिटिल चैंप्स में जो बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आगे भी अपने जिले का नाम रोशन करेंगे।
1: सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चों को आगे मोटिवेट करने के लिए क्या अलग अलग स्तर पे उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है?
0: देखिए, इसमें जितने भी प्रतिभागी रहेंगे और साथ ही साथ में जो रनर अप रहेंगे, विनर्स रहेंगे, हर एक लेवल पे उनको पुरस्कृत करने का काम जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे किया जाता है और उसी के अनुरूप उन्हें भी, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जितने भी हमारे विनर्स रहेंगे, उनको सारी फैसिलिटीज हमारे शिक्षा विभाग एवं विभाग की तरफ से दी जाएगी।
1: एक चीज देखा जाता है सर कि आज भी हमारे गांवों में लड़कियों को फुटबॉल खेल या अन्य खेलों से भी रोका जाता है, लेकिन लिटिल चैंप और सुब्रतो मुखर्जी में देखा जा रहा है कि लड़कियां भर भर के आ रही हैं। तो ऐसे में आज खेलेंगे शायद से कार्यक्रम के तहत आप वैसे अभिभावक गण अब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि हमारी जो दूरस्थ स्थल के टैलेंट्स हैं फुटबॉल के क्षेत्र में वो आगे बढ़कर आए?
0: देखिए, इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उपायुक्त महोदय एवं जिला प्रशासन सबकी तरफ से एक अच्छी खेल भावना का विकास एवं साथ ही साथ आजकल जैसे हर एक क्षेत्र में हमारी बच्चियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से हमारी बच्चियां इस तरीके के आयोजनों का भी भरपूर लाभ उठा रही हैं। साथ ही साथ अपने प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन करने का जो उनका ये अंदाज है, हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है, उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है और इससे जितने भी बच्चियां हैं और साथ ही साथ उनके जो कलीग्स हैं उनके अंदर भी एक मनोबल उनका ऊंचा रहेगा और साथ ही साथ हमारे जितनी बच्चियां हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। राज्य सरकार की तरफ से जो उनका प्रयास है कि बच्चियों को भी इस तरीके के आयोजन में जो है पार्टिसिपेट कराना है, तो उसका वो लाभ ले।
1: सर, गार्जियंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि हर एक क्षेत्र में प्रतिभा होती है, अपने बच्चों के प्रतिभाओं को आकार देना, साकार करना और साथ ही साथ उनको एक मूर्त रूप देना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। तो जितने भी अभिभावक गण है, अपने सभी बच्चे बच्चियों को इस तरीके के आयोजन में पार्टिसिपेट कराए, विभाग अपनी तरफ से जो सहयोग दे सकता है वो भरपूर सहयोग करने का प्रयत्न करेगा।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन के इस वीकली प्रोग्राम में सर आपने बहुत अच्छे संदेश दिए हैं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट एंड लिटिल चैंप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: खेल प्रेमियों, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में पिछले सप्ताह सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, साथ ही साथ लिटिल चैंप 2026 का भी आयोजन सभी प्रखंडों में किया गया है। ऐसे में दिनांक 29 जून को स्थानीय स्टेडियम छावनी में आयोजित किया गया लिटिल चैंप प्रखंड इचाक में, जिसके संदर्भ में बताते हुए अपने उद्गार प्रकट करती हैं फिजिकल टीचर किरण कुमारी इस तरह।
2: मैं किरण कुमारी, फिजिकल टीचर, केएन प्लस टू हाई स्कूल इचाक में कार्यरत हूँ। आज हम लोग सब सुब्रतो कप और लिटिल चैंप के लिए आए हुए हैं कर्जन ग्राउंड स्टेडियम में। हम लोग सभी, झारखंड सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है खेल को आगे बढ़ाने के लिए। सुब्रतो कप अंडर 17 गर्ल्स बॉयज के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे बच्चे नेशनल तक जाके खेलते हैं और अपना नाम आगे बढ़ाते हैं।
1: ये जो लिटिल चैंप जो अंडर 12 के लिए हो रहा है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले साल, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट लिटिल चैंप हुआ था, तो उसी को देखकर इस साल भी आयोजन किया गया है। तो हमें बताइए किरण जी की हजारीबाग के बच्चों का परफॉर्मेंस लिटिल चैंप में यहाँ से लेकर राज्य तक कैसा रहा?
2: लिटिल चैंप का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। झारखंड सरकार की ये पहल बहुत ही अच्छी थी। जो छोटे छोटे अंडर 12 के जो बच्चे थे उनको खेल के मैदान तक लाने के लिए।

0: और उन्हें ये दिखाने के लिए कि खेल तुम मैदान तक में आके तुम देखो कि खेल कैसा होता है। और छोटे छोटे बच्चों ने इतनी उत्साह से ये खेल को, फुटबॉल के मैच को खेला है और हमारे इचाक की टीम ने राज्य स्तर पर जाकर अपना परफॉर्मेंस दिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी फुटबॉल में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: तो किरण जी, टॉयज खिलौनों से खेलने वाले छोटे बच्चे अब पावर गेम फुटबॉल खेल रहे हैं और भी बच्चे खास करके ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हमारे टैलेंट्स लिटिल चैंप में सामने आए। इसके लिए छोटा सा मैसेज क्या होगा आपका?
0: मेरा मैसेज यही होगा कि छोटे बच्चे जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए यही प्लेटफॉर्म है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि सारे बच्चों से कि सभी लोग खेल के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो खेले और खूब बढ़े।
2: और अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट का, जो है हर जीत की कहानी।
3: खेल प्रेमियों, एक ओर जहां विश्व में फीफा वर्ल्ड कप की धूम मची है, तो दूसरी तरफ हमारे राज्य झारखंड में सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट और सेकंड लिटिल चैंप फुटबॉल टूर्नामेंट की धूम मची है। ऐसे में आइए, हर जीत की कहानी में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसी बाला की कहानी जो धर्मू इचाक प्रखंड के एक छोटे से गाँव से निकल कर नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर बनी और आज स्टेट फुटबॉल रेफरी बनकर पूरे गांव का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच है सेगमेंट में सुभागिनी कुमारी। सुभागिनी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेलेंगे शांसी में।
4: धन्यवाद मैम।
3: सुभागिनी, आप बताएं कि धर्मू एक छोटा सा गांव है जहां की बहुत सारी सुविधाएं आज भी नहीं है, ऐसे छोटे से गाँव से आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने का ख्वाब कैसे देखा, ये जज्बा आप में कैसे आया?
4: मैं छोटा से ही गेम पे फोकस करती हूँ और गेम मतलब खेल पे मुझे ज्यादा अटैक थे हम उस पे।
3: अच्छा।
4: तो भैया लोग को मतलब अगल बगल गांव वगैरह को देख के मैच वगैरह, तो मैंने वो भी खेलने का मन किया।
3: तो शुभांगी, आप हमें बताएं कि कौन कौन से गेम अभी तक आप खेल चुकी हैं फुटबॉल के क्षेत्र में?
4: फुटबॉल के क्षेत्र में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल चुकी हूँ, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीग होती है तो उसकी चैंपियन भी रह चुकी हूँ। सुब्रतो भी खेली हूँ, मुख्यमंत्री भी खेली हूँ।
3: अच्छा।
4: और नेशनल भी खेली हूँ।
3: बहुत खूब। तो ये बताइए सुभागिनी, गाँव में तो अक्सर लड़कियों को पढ़ने लिखने और खेल के क्षेत्र में जाने से रोका जाता है, तो आप किस तरह से, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस हद तक पहुँचने के लिए?
4: एक्चुअली मैं, मेरे घर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। प्रॉब्लम था गांव से, गांव वाले बोलते थे लड़की लोग के तुम लोग खेलती है निक्कर पहन के खेलती है, स्टार्टिंग में तुम लोग पास शूज भी नहीं थी, हम लोग खाली पैर ही खेले थे, फिर धीरे धीरे पॉकेट मनी शेप करके उसके बाद हम लोग एक एक पैर अपना शूज कर दे।
3: अच्छा।
4: बॉल कर दे, ऐसे स्टार्ट किया था हम लोग खेलना।
3: बहुत बढ़िया, बाधा पहुंचाते थे, रोकते थे, आज वही गर्व महसूस करते हैं। तो हमारी जो लड़कियां हैं फुटबॉल के क्षेत्र में आना चाहती हैं लेकिन झिझकती हैं, ऐसे ही पावर पैक गर्ल्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी?
4: मैम, मैं देना चाहती हूँ ये कि आपके अंदर जुनून है तो आप आगे की सबसे लड़ो, आपको अपना लक्ष्य पाना है तो आप खुद से पहले जीतोगे अपना लक्ष्य के लिए कि मुझे ये करना है, तो आगे कोई भी आ जाए, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना आ जाए, आप उससे भी लड़के आप आगे आ सकते हो।
3: बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने हमारी सारी लड़कियों को। तो सुहागिनी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने जीत की कहानी हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेलेंगे शान से, जीतेंगे शान से।
4: खेलेंगे शान से, जीतेंगे शान से।
3: फुटबॉल के क्षेत्र में एक नई नामचीन बनकर हमारे इस धर्मू गांव का नाम रोशन करें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना।
4: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: और खिलाड़ियों, खेलेंगे शान से में अब बारी है अगले पड़ाव का, जो है खेल मंत्र। खिलाड़ियों कहते हैं, अगर खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। इसलिए खेल मित्रों, खेल के मैदान में जंग जारी रखे, कोशिश करते रहें, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित ना हो। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन अपने जुनून के शोले को भड़काते रहो, जलाते रहो, खेल के मैदान में आगे बढ़ते रहो। खेलेंगे शान से में अब वक्त हो गया है आपको खेल जज देने का। दोस्तों, एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए सबसे

जरूरी होती है कड़ी मेहनत, सही डाइट और मजबूत मानसिक संतुलन। अपनी तकनीक पर आप ध्यान दे, ताकत से ज्यादा शॉट की टाइमिंग को महत्व दे और मैदान पर दबाव के बावजूद हमेशा शांत रहें। और खिलाड़ियों, खेलेंगे शान से में अब बारी है आपको देश और विदेश की प्रमुख पिछले सप्ताह के खेल हलचल से रूबरू कराने का। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले राउंड ऑफ 32 में फ्रांस और नॉर्वे ने अपने अपने मैचों में शानदार जीत दर्ज करने के अगले दौर में जगह पक्की की है। इसके साथ ही लंदन में बहुप्रतीक्षित 2026 विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। और दोस्तों, आप कुछ खबरें टेनिस से, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट विंबलडन लंदन के ऑल इंग्लैंड ब्लॉन टेनिस क्लब में खेला जा रहा है, जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अपने अभियान की बेहतर शुरुआत कर चुके हैं। तो खेल मित्रों, वक्त हो गया है खेलेंगे शान से की आज की कड़ी से अलविदा कहने का, लेकिन आज का ये हमारा फुटबॉल खेल और खिलाड़ियों से सजा कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए अपनी प्रतिक्रिया भेजना हमें ना भूले। नोट कर लीजिए हमारा पता, कार्यक्रम खेलेंगे शान से द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड 825301। तो खेल प्रेमियों, वंदना श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत इन चंद शब्दों के साथ कि न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच कर कभी मत डूबो कि दरिया में तुम्हें कोई बचा लेगा, बस तुम्हारा मेहनत और जुनून ही तुम्हें खेल के आसमान का ध्रुव तारा बना सकता है। खेलो दिल से, खेलो जान से, खेलो शान से। नमस्कार।

आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम खेलेंगे शान से। वाचन एवं संकलन था वंदना श्रीवास्तव का। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और इस कार्यक्रम के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। पेश है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

0: प्यार का मौसम। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत मजरूर सुल्तान पुरी के, संगीत आरडी बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घरौंदा फिल्म से। इस गीत को गाया है भूपेंद्र और रूना लैला ने। बोल गुलजार के हैं और संगीत दिया है जयदेव ने।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 8:01 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर। आप हैं खरसावा ढलाई डेला से लक्ष्मण सोय, अमित सोय, गीता सोय, सरिता सोय और अनु सोय। बंजारी नगर पोचरा से आप हैं महेश राम, सरिता देवी, वर्षा, पिंटू और परिवार के सभी सदस्य। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, आसमा सालिया, सोएफ खान, मुस्तफा खान, राउफ और शाहिद। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। जीटी रोड बरही से आप हैं सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम और कुसुम। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं अमानत फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश नायक और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजों में खेल फिल्म का गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। पसंद आप सबकी। आप हैं पचमंदिर रोड से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। भाटापारा से आप हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप हैं वलीउल्ला फकीर, डब्लू उल्ला और परवीन आसमा फकीर। बुलंद शहर से आप हैं बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, रुचि, विनीत आहूजा, निमित विशाल गगनेजा। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म का गीत रेशमा की आवाज़।

श्रोताओं, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत, तो अपने पसंद के गीत लिख भेजिए हमारे इस छोटे से पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी चाहत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग, पिन कोड है 825301।

अगला गीत आप सबकी पसंद पर आप हैं नया टोला भीकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान सुधा पासवान पूजा पासवान विकास पासवान नितिन पासवान और मनोज पासवान चिपकाला बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर श्रीमती सव्या ठाकुर दिलेश्वरी भरत ठाकुर मंजू संतोष ठाकुर विकास कुमार ठाकुर जितेश आदर्श अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार और मास्टर मनीष बड़ा बाबू गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती राकेश ताती कुमारी निशा प्रकाश और देवेन रांची से आप हैं वीर शंकर आकाश सतीश मीनू मिका

ओल्ड निसनर ग्रुप बरकाकाना से मोहम्मद इब्जाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना अफजाल ताज और तस्नीम, रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, निखत परवीन, एहसान अहमद, तहसीन बानो, आरजू परवीन, नसीम अहमद, खलील अहमद और निसार अहमद। आप है गोविंदपुर धनबाद से शराफत हुसैन अंसारी, बेगम रिहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। रातूराज रांची से सच्चिदानंद दुबे, नटवर कुमार दिवाकर और सत्यम। महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, प्रेम साहू और फेरहा राम धीवर। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ब्रह्मचारी फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया है इस गीत को।

झुमरी तिल्लैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, जामा मस्जिद रोड रामगढ़ से शमीम अहमद अजमेरी खातून, एहसान अहमद आरजू परवीन शहजादा सलीम, निगार सुल्ताना शबाना परवीन और गुलाम अली, ग्राम जामटी अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलीकर, दिनकर विमल और विशाखा कासलीकर, औरंगाबाद से आप हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राज

मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू, भोला, उनके मम्मी पापा और बहुत सारे दोस्त, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोत, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा और एस आर कांगड़ा, ओल्ड लिस्नर ग्रुप मगनपुर से अबजद अली और अब्बास आलम, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर, आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं अपना देश फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जुगनू फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज पसंद आप सबकी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। बेरडी से हुकुम करम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। शिवाजी चौक से आप हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:44 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: तीस्ता इश्यू।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी

0: सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम

विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9000 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: ढले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नील कमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब यही

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहे।
0: तो सुनिए। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz।

सभी सुनने वालों को अंजना का नमस्कार। कार्यक्रम रजनीगंधा में स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक फिल्म से, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जूली से। संगीत दिया राजेश रोशन ने। ज्वेल थीफ आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने गाया इस गीत को। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। संगीत दिया है एस डी बर्मन ने।

इंतकाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से दीजिए अंजना को इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:31 हुए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को। हवाईयन थीम वाला यह गाना अजीब दास्ता है, ये जिम रीव्स के माई लिप्स आर सील्ड पर आधारित है। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और सभी गीतों के लिए संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम एक फिल्म से में आप सुन रहे हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म के गीतों को। इस फिल्म को निर्देशित किया किशोर साहू ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा ने।

समझाओ दिल, इसको दूं या उसको दूं।

शैलेंद्र के बोल को आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी के लिखे गीत को, आवाज लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से का सफर होता है समाप्त। दीजिए अंजना को इजाजत, नमस्कार। दोस्तों आपको बताते चले, हमारी आज की फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:59 हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर

0: आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।